सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तुद्यागर।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

सात अष्टपदी। जय मात पिता सुतमीत न पाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जय महाभयान दूत जम दलायत केवल नाम संग तेरा चल्ला। जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उदारी अनग पुनः चरण करत नहीं तर हर को नाम कोट पाप पर हर। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंद ना पर हर का नाम जपत निस्तरा। अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत आगावै। जेह मार्गे जात अकेला तय हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नामन सदा त्याय नान गुरमुख परमगत पाइय। छूटत नहीं कोट लग बाही नाम जपत है पार पराही। अनग बिगन जाय संगारे हर का नाम तत्काल उदार है। अनग जोन

ऐसा नाम जप मन रंग नानक पाइय साधक संग जे मार के गने जाहे ना कोसा हर का नाम उहा संग तोसा जे पैठे महाअंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को ना सिंह नु हर का नाम त नाल पछानू।

बिन बुझे मिथ्या सब पय सफल दे नान घर हर नाम लय बिरथी सागत की आरजा साज बिना के हव सुचा बिरथा नाम बिना धन अंध मुखावता के दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन ब्रेथा बिहाय बेग बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन ब्रिथे सब काम ज्यो कृपन के निरार दाम धन धन ते जन जय घट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रह तबर कशबर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेखना काहू भीन प्रदेश अवर उपदेश आव ना करा आवत जावत जन्मय मर इसके अंदर बसे निरंकार तिसकी सीख तरा संसार जो तुम भाने तिन प्रभु जाता नानक उंजन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करतन बेरा किसे दूर जनाब किसे बुझावत नेरा उपाव सियानम सगल ते राहत सबक जाने आत्म की राहत जिस भाव तस लय लड़दाए थान थरंदर रया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमुख निमुख जप नान करी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी ने प्रसाद शक्ति अमृत खाए तुष्टा गुरु को रखवन माए जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रास भोग नानक सदा ध्याई ध्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटम रहावें तिसे त्या कथब लुभावें जय प्रसाद सुख सेज सोईजे मन आठ पैर तक जस गा बीजै जय प्रसाद तु सब काऊ मान मुखता को जसर सर मखाने जय प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दुर्गे बान पावे नानक पथ सेती कर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देहि लबलावत सराम सनेही

भसन जय प्रसाद हस कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फल जय प्रसाद ब्रह्मगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग अवरगत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभु को मूलना मनो बिसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मर मूर्त साखो जाप जय प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साज रे मर मेरे तू तासियों राज जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाहे जपै सो नाम आप गा भाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपाते हुए प्रगास प्रभु दयाते कमल बिगास प्रभु सुप्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दयाते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभु तेरी माया आपो कछुना किन्हू लया जित जित लाभो तित लगे हर नाथ नानक इनका कछुना हाथ सरोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोहे जो जो कहे सो मुक्ता होए सुनमिता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध के संग मुखू जल होत साध संग माल सगली खोत साध के संग मिठे अभिमान साध के संग प्रकटा सुगयान साध के संग बजे ब्रभ नेरा साध संग सबोत नवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक बर जतन साध की बहमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा ब्रह्म माहे समानी साधक संग अगोचर मिला साधक संग सदा प्रफुला साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंछा साध संग वे सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतहुंता वे साध संग अस्तत मन पावे साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न साध संग दुश्मन सा मीत साधु गह संग महापुनीत साध संग किस्य नहीं बैर साधक संग न भींगा पैर साधक संग नाही गमंदा साध संग जाने ब्रह्मानंदा साधक संग नाही अवताप साधक संग तजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नारक साध प्रभु बन आई साधक संग ना कबहू तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस अगोचर लहै साधु कह संग आजार सहै साधक संग बसे थान उचै साधु कह संग महल पहुचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कह कुर्बान साधक संग सब गुण उदार है साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है साधु कह संग सो धन बावे जसंत सबको बरसाव है साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कह संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वधान गम नानक साधक संग सफल जन्म साधक संग नई कशकाल दर्शन भेट तो होद निहाल साधक संग कलुकत हराय साधक संग नरक पर हराय साधक संग इहा उहा सुविला साध संग बिछरत रमेला जो इच्छा है सोई फल पावे साधक संग में वृथा जावे पार ब्रह्म साध रत बसे नान उदरय साध सुन रसय साधक संग सुनो हर नाहो साध संग हर के गुण गाओ साधक संग ना मनते बिसराय साध संग सर पर निस्तराय साधक संग लगे ब्रह्म मीठा साधु कह संग घटगा डीठा साध संग भया गया कारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध बैठे संजोग साध की महिमा वेदना जाने जिता सुने तेता बख्याने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उछते उची साध की शोभा मुछते मुची साध की शोभा साध बन आही नानक साध बरा भेद ना पाई सरोक मन साचा मुख साचा सोए अमर ना पेख एक बिन कोय नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा अंदर लेप जैसे जलमय कमल अले ब्रह्म ज्ञानी सदा अंदर दोख जैसे सूर सर्व गौ शोक ब्रह्म ज्ञानी का दृश्यमान जैसे राज रंगो लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी का तीर जेग जो वसुदा गऊ खोते गऊ चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पावक सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल दे निर्मला जैसे मैला लागे जला ब्रह्म ज्ञानी का मानव प्रगा जैसे तारु प्रयाकाश ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी का नायब महान

ब्रह्म ज्ञानी उच्चते उच्चा मन अपना सप्ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी सहजन भये नानक जन पर व्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब पर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक प्रयास ना ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी का ना ही धंधा ब्रह्म ज्ञान ले तब्द बंधा। ब्रह्म ज्ञानी का विश्व भला ब्रह्म ज्ञानी सफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपाय सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग ब्रह्म ज्ञानी का भाषा ब्रह्म सांग।

ब्रह्मज्ञानी का मन परमा आनंद, ब्रह्मज्ञानी का घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संहिता, ब्रह्मज्ञानी का वह चंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंद, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभा आ, ब्रह्मज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बट भागी पाइय, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्मज्ञानी को खोजे मेसर, नान ब्रह्मज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथे न जाए अदा खियर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंधना पार, नान ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार।

ब्रह्मज्ञानी का सर्वब्रहात, ब्रह्मज्ञानी का सकलाकार, ब्रह्मज्ञानी आभ्रंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा, ब्रह्मज्ञानी बलिदानक, ब्रह्मज्ञानी सर्वघातनी सलोक और ताराय जो अंतर नाम सर्वपेक्ष भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक अपरस सकल निस्तार अष्टपति मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पारस रूप न वेख नेत्र साध की टहल संसंग उते हेत सासंग साध की टहल संसंग हेत करना सुने काहू की निंदा सबते जाने आप सको मंदा गुरु प्रसाद भिख्या पर हरे मन की बासना मनते ठराए इंद्री जित पंच दोगते रहत नानुगूढ़ मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस उपर सुप्रसन्न विषम की माया ते हे भिन्न कर्म कर तो वह निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काउ फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग राचे मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होत कृपाल आप दृढ़ अपने नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मंते मिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साह संग पापा मन खोवे तस भगवती की मातु तम हो वै भगवंत की ठहर कराय नतनीत मंथन अर्भ भीषण प्रीत अर्घे चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रभु दे राम नाम आत्मा मैं सो दे राम नाम सारस पीवा।

अमरना को दे अवदेश नान को पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहवरना में जपे कहु नाम जो जो जपे दिसकी गत हुए सासंग पावे जन को। कर कृपा तारे पास प्रेत मुग्ध पात्र को तारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कते ना पाई है धर्म नानक तिस मिला। जिस लिखया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दाद संदन पाए दिन पाया। सदा निकट निकट हर जान सो दास दुर्गे परवान अपने दास को आप कृपा कराए। इस दास को सब सोजी पर है सकल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास। प्रभु की आज्ञा आत्म है ताव है जीवन मुक्त सौ कहाव है। तैसर्ग तैसा उस शोक सदा अनंत है नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुबाटी तैसा मृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा रा जान जो वर्ताए साई जुगत नानक उपुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगरे ठाओ जिस जिसगर राखे तैसा दिल नावा पे करन करावन जो प्रभावे सोई फन होग पसुरिया भय अनंत रंग लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक उस्तत करे हे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बाबिद अनक प्रकार राष्ट्रपति। कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भाई तीर्थवासी कई कोट बान भरमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तारे कई कोट गवगाह विचारे कई कोट नवतन नाम ध्यावे नान करते कांत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिगातम ने कोर कई कोट पर दर्भ को हिरे कई कोट पर दुख ना करे कई कोट माया सरम माहे कई कोट प्रदेश परमाहे। जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना। कई गुण सिद्ध जति योगी कई गुण राजे रस भोगी कई गुण पंखी सर्व उपाए कई गुण पाथर बिरख न बजाए कई गुण पवन पाणी बस अंतर कई गुण देश मंडल कई गुण ससियर सूर नक्षत्र कई गुण देव दानव इंद्र सेने शत्र सगल समग्री अपने सूतारे नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है। कई गुण राजस तामस सात कई गुण वेद ब्राह्मण सिमरत अर शास्त्र कई गुण किए रतन समुद कई गुण नाना प्रकार जंद कई गुण किए चिर जीवे कई गुण गिरी बेर स्वर्ण थीवे कई गुण जखे किन्नर पिशाच कई गुण भूत प्रे सुगर मिर्गा सबते नेरा सब हूते दूर नानक अलप त्रया भरपूर। कई गुण पाताल के वासी कई गुण डर के स्वर्ग निवासी कई गुण जन्मे जीवे मरे कई गुण बहजूनी फिरे कई गुण बैठ दी खाए कई गुण घाले थक पाहे कई गुण किए धनमंत कई गुण माया में चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब कुछ प्रभु के हाथे। कई गुण भय बै रागी राम नाम संग तिल निब लागी कई गुण प्रभु को खो जंते आतम है पार ब्रह्म लहंते। कई गुण दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलो प्रभ विनाश कई गुण मांगे सतसंग पार ब्रह्म तिल लागा रंग। जिनको आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई गुण खाणी अर खंड कई गुण आकाश ब्रह्मांड। कई कोट हो अवतार कई जुगत किन्नो विस्थार कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट किन्ने बहु भान प्रभ से ब्रह्मा है समाता कंत ना जाने को आप आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो बता तम बरगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सा साधी जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रासुख सह समावे अपने जन को सा सा संभारे नानक।

राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हारा पेगा विस्तार जात सभावित सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाय तुम ते भिन्न ही किशो अपनु सुसब जगत पर होए जागो प्रभु जीवा बुझाए सच नाम सोए जन पाए सो समदर्शी दत का बेता नानक सगल शिष्का जेता जी चंद्र सभता के हा दीन दयाल अनाथ कुनाथ जिस राखे तुस को ना मारे सो मुआज मनो बिसारे तिस तज अबर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जागे सब हाथ अंदर बाहर जानू सात गुण निधान बेअंत बार नानक दास दा बलहार पूर्ण पूरा दयाल सब प्रवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहो ब्याप प्रतपाले जीन बाबा जो जो रचो सुत से त्यात जिस भाव तिसलाए मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंदर विश्वास कर मान्या कर नार नानक जान्या जल्ला गहर एक नाय तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक हो सेवा बनयाई हुकम बूज ब्रह्म बद बाईस तुय प्रण ही विचार जाके मन वस्या निरंकार बंधन तोर भय इंद्र भय रंदन बुझे गुरगे पैरे लोग सुखिये पर लोग सुहेले नान खर पर व्यापे मेले सासंग मिल करो आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देगा करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह स्वभाव आ

रामपुरी अमृत जाके दर्शन पेख उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनुभ सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रभान तर जामे पुरख प्रधान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल।

ज्ञानगमन प्रगाष्टपदे संत संग अंतर ब्रह्म ठीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समयगरी एक सघाट माया नकरंग नाना दृष्टा है नाव निध अमृत प्रभु का नाम देह में इसका विश्राम सुन संवाद अनत नाद कहना जाइए चरज विस्माद तीन देखिया से आप दिखाए नानत जन सो जी भाई सुवंतर सो भार आनंद घट व्याप रहा भगवंत तरण माया गाज भयाल सर्वलोक पूर्ण व्रत बाल बंतन पर्वत है बाल ब्रह्म जैसिया गया तैसा कर्म पौन पाणी में संतर बाहे चार गुण दसे संबाहे दस्ते भिन्न कोठाऊ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत में देख ससियर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभु की सबको बोला आप अडोला कबू डोला सर्व कला कर खेला खैल मोला पाइय गुणे अमोल सर्वजोत में जागी जोता हरियो स्वामी ओतबोध गुर प्रसाद ब्रह्म का दास नानक तिन में विश्वास संजना का पेखन सब ब्रह्म संजना का हृदय सब धर्म संजना सुने सो भजन सर्व्यापी राम संग रचन जिन जाता तस्किए रहत सद भजन साधु सब कहत जो जो है सोई सुख माने करण ग्राम नहार प्रभु जाने अंदर बसे बाहर भी वही नानक दर्शन देख सा मोही

पूरे के गुण गाओ अष्टपदे पूरे गुरका सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंदर की उदरय चेंद आस अनहित त्यागो तरंग संदना की धूर मन वंग आप छोड़ बेनती करो सा संग अग्न सागर तरह हर तन के पर लेहो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितो नारायण एक एक रूप जाके रंगा ने गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत धारावत रहे लोके निस्तार सबल जीवन सबल तागा संग जागे मन लागा रंग जा जाय शब्द अनाहत बाजे सुन सुन अंत करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल मांत के माथे नान गुदरे तनका साथे सन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रे नमृत नाम सात संग लायन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुंदर सना कहते कर प्रसाद या प्रभुतारी नानक निभीखे भमारी प्रभु की उसत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख बनी सहज गोबिंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निधान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब देव उजबाए स्थान बाहर न होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रित नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वदाय सिद्ध विद्या तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मध सकल देव उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर सी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कह मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने हनदान जपे मन कोए सब जुग में तागी कत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र भेद मखाणी सगल मथान केवल हर नाम गोविंद भगत गए मन विश्राम कोट अपराध सा संग मिटे संत कृपा दे जमते छुटाए जा गए मस्तक कर्म प्रभाए साध सरन नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत जनयावे हर प्रभ जीत जन्म मरण ताका दुख निवार दुलाभ दे तत्काल उधारे नवल शोभा मन ताकि बानी एक नाम माए समानी दुख रोग विनसे भय भरम साध नाम निर्मलता के कर्म सबते ऊच ताकि शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मानी।

तिथियों और प्रवास हैं, निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है, विपुक्त स्वरूप है, प्रजुगते अनूप है, निरुक्त सदा है, विपुक्त प्रवाह है,

कृपानिकंत मोहे अनाथ गरीब न मानी कंत पकर हम की निरानी। जाब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा धन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सदगुर मेली प्रभ गुणतासा आसा महला पंजवां। माथा त्रिकुटी दृष्ट करूर बोलै कौड़ा जह बाकी फूड़ सदा भूखी पिर जाने दूर ऐसी स्त्री एक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाउ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा बिशन महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। भरत नेम कर था के पुनः चरना ताट तीर्थ भवे सब धरना से उबरे जे सदगुर की सरना माया मोहे सबो जग बादा होमै पचै मन मुख मूरा खा। गुर नानक बहां पकर हम राखा आसा महला पंजवां। सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी इहां उहां काम न प्राणी संत त्रिपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्ब सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ। संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किछ दिया तिस चित बत नाहे महा बिख्या मह दिन रहन जाहे कहो नानक प्रभ सिमरहो एक गत पाईए गुर पूरे टेक आसा महला पंजवां। नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोख सगल पर हरिया सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाई परम गत पाई रहा। साध जना के पूजे पैर मिटे उपद्रह मन ते बैर गुर पूरे मिल झगर चुकाया पंच दूत सा बस गत आयम। जिस मन बसया हर का नाम नानक तिस ऊपर कुरबान आसा महला पंजवां। गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे जा की सेवा सर्ब सुख पाव है अवर काहू पह बौड़ न जाव है सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापी है। बलहारी तिस संत प्यारे जिस प्रसाद प्रभ मन बासी रहाओ जाका दान निखूटा नाही भली भांत सब सहज समाही। जाकी बख्श न मिटै कोई मन बासा यह साचा सोई सगल समग्री ग्रह जाका पूर्ण प्रभ के सेवक दुख न चूरन। ओट गही निरपौ पद पाईया सास सास सो गुण निध गाईया दूर न होई कतहु जाईया नदर करे ता हर हर पाईया। अरदास करी पूरे गुर पास नानक मंगा हर धन रास आसा महला पंजवां। प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सगल को हुआ सुख कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सदगुर को जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख बनासे सदगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय बसाई मन चिंतन सगले फल पाई अगन बुझी सब होई सांत कर कृपा गुर कीनी दात। न थावे को गुर कीनो गुर दीनो थान न माने को गुर कीनो मान बंधन काट सेवक कर राखे अमृत वाणी रसना चाखे बड़ा भाग।

दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी श्रेष्ठ सब रहाओ सदा सहाय संत पेख सदा हजूर नाम बिहुनड़िया से मरण बसूर बसूर दास दसतन पाई मिटिया तिना गौण बिसरिया जिन्ना नाम तनाड़ा हाल कौन जैसे पास हरे आओ तैसा संसार सब नानक बंधन काट मलाव आप प्रभ आसा महला पंजवन हब्बे थोक बिसार हिको ख्याल कर झूठा लाहे गुमान मन तन अर्प तार आंड पैर सा लाहे

सर्व सुख पावो अग पावो के न पावो एक दातार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हम मांगो आन ल जावो सगल छत्रपत एको ठाकर कौन सम सर लावो रहाओ उठो बैसो रह पे ना साको दर्शन खोज खोजावो ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तिन को महल दुल पावो अगम अगम अगाध बोध कीमत पर न पावो ताके सरण सत पुरख की सदगुर पुरख ते आवो भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकर काट्यो बंद करावो कौ नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म न आवो आसा महला पंजवां।

0: शरण परे प्रभ अंतर जामी नाम की ओट पकड़ी प्रभ स्वामी शरण परे प्रभ अंतर जामी नाम की ओट पकड़ी प्रभ स्वामी वाहे गुरु एक तू ही एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू ही एक तू एक तू ही एक एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू ही एक तू ही एक तू एक तू ही चाचरी शान गोविंदे मकंदे उदारे अपारे हरि अंकार नामे अकामे गोविंदे मकंदे उदारे अपारे हरि अंकार नामे अकामे ताड़ी दर्पा मंगना दर कदे न छोड़े मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़ मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़ प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती कोड़े प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती कोड़े राज मेल खुशियां कणी ताए भुख न मोड़े राज मेल खुशियां कणी ताए भुख न मोड़े ढाडी दर पर मंगना दर कदे न छोड़े ढाडी दर पर मंगना दर कदे न छोड़े नानक मन तन चाओ नित प्रभु को लोड़े नानक मन तन चाओ ए नित प्रभु को लोड़े तन तन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर ऊच भगवान नानक की प्रभु बेनती अपनी भगती लाए तन तन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर ऊच भगवान नानक की प्रभु बेनती अपनी भगती ला धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कोट कोट प्रणाम भुल चुक माफ तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धन्यवाद नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे स्वादा बोला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल उठ गए शबा मलेश की कर कूड़ा प्रसार डांका वाजी फतेह का निरंकार अवतार नानक गुरु गोबिंद सिंह पूरन गुरे अवतार जगमा जोत बराजी अब चल नगर मजार श्री सच खंड गए दरबार श्री सच खंड गए सलवार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु
1: सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ दीन दर्द निवार ठाकर राखे जन की आप तरन तरन हर निध दुख ना सकै व्याप तुम दाते ठाकर प्रतपालक नायक खसम मारे निमख निमख तुम ही प्रत पालो हम मार्ग तुमरे तारे